0: यह मंदिर अच्छे है ना?
1: हाँ जी, मंदिर बहुत सुंदर है ना?
2: हम आपके रेनकोट फैमिली वर्द रहा।
1: नमस्ते।
2: पिस्ते।
1: इस मंदिर का पंडित कौन है?
2: कौन है सामान? अद पंडित का मतलब कोयल के बेली उपाग।
1: नहीं बेटा।
2: बेटा एंग मात्र रानगे। ये ला मासा चमरना। अद उन पोंगले ही पुड़ी रूम बुटे कल्चु पुरानगे माँ।
0: वो कौन है?
2: यारे। अबरा। अबरे बाबा।
3: ए नलर नलर। ना मरे पुड़ी वरी की बेटू नर रहे।
2: वेणु शास्त्री। वेणु शास्त्री।
0: अच्छा वेणु शास्त्री।
2: आमा आमा।
1: इस बच्ची का बर्थडे है। पंडित चाहिए। पूजा कराना है। पूजा
2: पूजा कराना है। இருங்க சொல்றேன். எப்பா திருநாகர் சே திருநாகர் சே உன்ன தேடி ஒரு இந்தி ஃபேமிலி வந்திருக்கு. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணுமா? வா எம்கா மாணிக்கு இன்னைக்கு இருக்கு உனக்கு
3: என்ன
2: உன்ட்ட ஏதோ பேசணுமா?
1: நமஸ்தே.
0: நமஸ்தே.
1: ஹம் சவுத் இந்தியா டூர் பண்ண நிக்கலே ஹே.
2: இஸ்
1: பச்சி கா ஜனம் தின் ஹே, தும் மந்திர் சே போலா பூஜா கர்வா லே.
3: அச்சா, ஆப் ஹமாரே டெம்பிள் மே ஆயே ஹே, பஹுத் குஷ் ஹுவா.
1: ஆப் அச்சி தரஹ ஹிந்தி போல்தே ஹே.
3: ஹம் ஹிந்தி தோ ஜானதே ஹி ஹே. அச்சா பேட்டி, தேரி ஜனம் தின் ஹே?
1: ஹாம்.
3: கியா நாம் தேரா?
1: முஸ்கான்.
3: முஸ்கான் ஆ, பஹுத் பியாரி நாம் ஹே. அச்சா பேட்டி கி நட்சத்திர கியா ஹே?
4: ஸ்டார் இஸ் பூசம்.
3: ஓ பூசம். ஹாம், வெரி குட் ஸ்டார். ஷீல் பிகம் வெரி பிக் ஹீரோயின். தூ தோ ஐஷு ராய் பன் ஜாயேகி.
4: Beta, what's the name of the temple?
3: ये तो शाचना temple है.
4: Who is the main god?
3: Lord Shiva.
4: या अच्छा अच्छा.
3: अच्छा चलिए पूजा करवा देंगे. ए, वहाँ क्या देख रहा है? काम कर, साफ कर, मंदिर को साफ कर, बेल मार बेल. चलिए आप चलिए.
2: इल्ला मुली बेस रहा?
3: यार ये वाला, इवंगे वड़नाटल अंदर काम है. ये मंदिर का बड़ा पंडित है, वेणु शास्त्री जी.
0: वेणु शास्त्री का?
3: हाँ जी.
1: ये लड़का कौन है?
3: ये हमारा मंदिर का बेल बॉय है.
1: बेल बॉय?
3: हाँ जी.
1: ये तो बैड बॉय है.
5: इन पतिया वाले तो सुलीर काम है.
3: आइए पूजा करेंगे.
2: बैड बॉय என்ன? बैड बॉय ன்னு போறாளே அப்படினா என்ன?
5: அதாவது இந்த உலகத்திலேயே ஒண்ணா மாதிரி அயோக்கிய பைய கிடையாது.